0: तुमको भाभी
1: पूर्ति जातीतान राजा शांति मना चाहूँ कि रेनी ना चिकुल कुली मना अपनी बाओ का मची हम लाफन रे थरे था ना हम लाफनी यार सोशियली ना हम लाफनी यार पासल

0: बस तुम कुफा भी
1: निवास ये चाम सोना फुमारे ये चमुलाना सोंसन तीने नंप्रिस्ता अफ़तिये मिनिस्टर से या चुनिस मचारकार से तुम्हाने मिलापांतनान से या नाम फारेर वे राजनप्रिस्ता नरो मगती चमासो न्यूनारो तीने निश्चिसरारा इन्हें नहीं जाने निवास ये रफामियास फुल दिमाग चुरवारी म्यूटो नंदाला ने ना इजियान म्याचुनिया तीते ऐसा सान फंडेशन ने नहीं चम सहरिचा रिचुरू रियोने मामिल लफादे मनारगा नंहान नवाना सोची सुने स्टुचिफ्टो ना फामिया जाचिन चुम्बुजो अजमेर फा चावता तीन ना यंबार रियो जाने सोफिरा सी रिसोफिरा ताऊल जेरो मिस फादे मंजाना Aiza, le fanampiana anay efa tapitra efa deuxième confinement zao a fa nefa zay mbola tsy naharay andeha izy dia mba tokony jerevana akaiky zany momba anay hoe aiza zay mamelomba dia manjanaka ny anay a ny hoanina androany tiatavina androany ny hoanina rapitso tiatavina androrapitso